0: दाल शीतलपुर माड़ी पैला घुमा बाबू मैं पैदे खुना घुमा मा फाउन खुना घुमा क्या एक दीदी कता गई है घर वरीपरी हेच्छ गोठा जाना खेल गोठा छाड़े देखी क्या लड़े देखी तैं उठा खाता लिया सुताई अभी तैं फेटी छाड़े इस अपरेशन कर इस नौपोका खून हाल अब भेन अब एक पल्टी आयुर्वेदिक दवाई में लान पर्वर समदिन ने भन्न मलाई कपड़ा भी पछा कान बाबू कपड़ा अब आशा छेन भर ल चाँड हेर खाम अभी तैं जई छोरी ने लाई जानूर अभी तैं अभी जॉइन लानु आयुर्वेदिक दवाई ने माचे किम बाबू तर मत डाँडो काटर आए डाँडो काटर आए तर आयुर्वेदिक दवाई ने मचे
1: दीर्घकालीन उपचार को लागी वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली
2: संपर्क लायंस चौक आनंद मार्ग नयनगढ़ चितवन मोबाइल 98 550 50 934
3: कम्पाउन्डिङ गर्ने तथा कुखुराको आधुनिक खोर बनाउने सेवा सँगै सिमेन्टबाट निर्माण हुने रिङ पोल पिलर रेलिङ भेन्टिलेसन सिमाना

0: Promise FM 93.2 MHz.
1: So this time check.
2: इस समय सूचक का साथ में
3: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केंद्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन CMC हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0656 5369 53 98550 77061 र 98550 77053
4: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जलि हस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0656 4934 40 4935 80 र 98550 26 440
1: It's 1 o'clock अहिले 1 बजेको छ।

0: टाइम चेक इस समय सूचक का साथमा
1: दक्षिण कोरिया में पढ़ाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5563 5550 7071 र 9855 7053।
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पाञ्जलि हस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन। फोन 0556 4940 4493 580 र 98550 2640।
0: It's 3 o'clock. अहिले 3 बजेको छ।

0: रिसाइसन खोलेनन् खै
1: खै यति परलान्दैन नगाउने के हो गठे
2: मुहा फ्रियाली छ क्या
3: हे के भनम खै

0: समय सूचक का साथ मा
1: दक्षिण कोरिया मा पढाई र रोजगारी को उत्कृष्ट परामर्श केन्द्र गोल्डन इमिनेंट इंटरनेशनल प्राली भरतपुर चितवन सीएमसी हॉस्पिटल को ठीक अगाड़ी संपर्क 0556 5569 53 98 5570 7061 र 98 5570 7053
2: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट मेडिकल चेकअप डायग्नोसिस ल्याब र सबै रोग व्याधि को उत्कृष्ट उपचार सेवा रहेको पुष्पांजलि हॉस्पिटल प्राली बाल मंदिर रोड भरतपुर 10 चितवन फोन 0556 4394 440 4395 580 र 98 5570 2640
3: It's 10 o'clock. अहिले 10 बजेको छ।